0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई

आपके इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिस्य के संग साझा करती है। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छाटवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसके स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ के खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, जो बातें कही गई हैं, उसके प्रकाश में कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा सही जान पड़ती है। यह सिद्धांतों और नियमों की पुस्तिका नहीं है जिन्हें हमें लागू करने की जरूरत है, बल्कि वे हमारे लिए आत्म परख के माध्यम से साझा की गई प्रक्रियाएं हैं। इसकी उत्पत्ति सुसमाचार के अनंत सत्य और इतिहास के सवालों के मध्य मिलन से हुई है। यह वर्तमान समय की निशानियों से चुनौती लेती है और विज्ञान की खोजों, संस्कृतियों और मानवीय अनुभव से अपने को पोषित करती है। इसलिए जब हमारे भाई बहनों के सम्मान को क्षति पहुंचती है, जब राजनीति मानवीय त्रासदियों का उल्लेख नहीं करती है, जब अर्थव्यवस्था मानव के विरुद्ध हो जाती है या विज्ञान अपनी हस्ती से परे जाती है, तो कलिसिया को चाहिए कि वह ख्रिस्तीय धर्मावलंबियों के साथ मिलकर और दूसरे धर्मों के संग अपनी आवाज को बुलंद करे, अधिकार जताने के उद्देश्य से नहीं बल्कि एकता को प्रोत्साहित करने हेतु। सामाजिक धर्म शिक्षा की यह समझ इतिहास में एकता का ईश शास्त्र बनता है। एक इतिहास जिसमें शब्द ने शरीर धारण किया, जो वार्ता, यादों और भविष्यवाणियों के माध्यम हमारे बीच में निवास करना जारी रखता है। श्रोताओं, इतिहास में कलिसिया की उपस्थिति की रूपरेखा तैयार करने के बाद, जहां वह अपने को वार्ता के माध्यम दुनिया में प्रस्तुत करती है, संत पापा लियो कहते हैं कि मैं अब सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांतों के विकास के संबंध में विचार करना चाहूंगा, जिसने 19वीं सदी से अब तक एक वृहद सामाजिक परिवर्तन का प्रत्युत्तर दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं इसके समृद्ध शिक्षा के संबंध में न्याय नहीं कर सकूंगा, जिसका मूलभूत सार कलिसिया के सामाजिक धर्म शिक्षा में प्रस्तुत की गई है और जिसका उल्लेख वर्तमान समय में धर्म सिद्धांतों की शिक्षा में की गई है। ना ही मैं व्यवस्थित रूप में हर चीज के बारे में कह सकता हूँ जो मेरे पूर्ववर्ती आराध्य अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से लवदातो सी और फ्रतेल्ली तुत्ती में व्यक्त किए गए हैं। इसके बावजूद मैं कुछ विशेष बातों पर जोर देना चाहूंगा जो इस बात की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है कि कैसे वर्तमान परिस्थिति में परंपरा की बातें निरंतर बनी रहती हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस परंपरा के अंदर मानव और समाज के संबंध में कभी न बदलने वाले सार पुराने परिस्थितियों को सुनने और समकालीन मुद्दों पर जवाब देने की नई योग्यता के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। अब मैं विकास के कुछ विशेष स्तरों के बारे में जिक्र करूंगा, जो विश्व प्रेरित पत्र रेरुम नोवारुम के शुरुआती काल से शुरू हुआ था। श्रोताओं, संत पापा लियो अपने विश्व प्रेरित पत्र में लिखते हैं कि हम अभी जिसे कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा कहते हैं

अपने में स्वतः आधुनिक युग की एक उपज नहीं है, बल्कि यह समाज के जीवन में कलिसियाई परंपराओं से संबंधित एक लंबा चिंतन का फल है, जिसे हमने ग्रहण करते हुए आकार दिया है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ, कलिसिया के आचार्यों और ईश शास्त्रीय तथा मध्यकालीन और आधुनिक युग के वैधानिक विकास पर आधारित है। यद्यपि कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत इस अभिव्यक्ति की मुहर संत पापा पियूस 12वें द्वारा 1950 में लगाई गई, जबकि इसकी विषय वस्तुओं के ढांचे का स्वरूप सामाजिक शिक्षा के शरीर स्वरूप संत पापा लियो 13वें के द्वारा विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नवारुम से शुरू हुई। अपने समय की नई चीजों का सामना करते हुए पूंजी और रोजगार के मध्य संघर्ष, कार्य क्षमता पर सवाल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, संत पापा लियो 13वें ने अपने को सिर्फ उथल पुथल को स्वीकारने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को कलिसिया की प्रेरिताई हेतु एक क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें गहरी आत्मपरक हेतु खोला और सुसमाचार के प्रकाश में उनके कारणों और संभावित समाधानों को समझाया तथा ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए मानव को संपूर्ण दृष्टिकोण से समझने हेतु मदद की। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस कार्य को सामाजिक धर्म सिद्धांत की एक लंबी शिक्षा स्वरूप देखा, एक अनुकरणीय अभ्यास की भांति, जिसके द्वारा कलिसिया जब ऐतिहासिक परिवर्तनों का सामना करने की स्थिति में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सच्चाई की जांच पड़ताल करती, उन्हें घोषित करती और उनके समाधान हेतु मार्गों की ओर इंगित कराती है। इस भांति विश्वास में हमेशा रहने वाली बातें और कलिसिया की पुरानी ज्ञान की बातों को हम एक सजीव सिद्धांत में प्रकट होता पाते हैं, जो सुसमाचार के प्रति उन परिस्थितियों में भी निष्ठावान बनी रहती है, जब उन्हें हर युग की नई चीजों का प्रत्युत्तर देना पड़ता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवे ने कहा है कि वे जिम्बाब्वे के करीबा झील में नौका हादसा के शिकार लोगों के लिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं और पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय पुलिस सेवा ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 11 अगस्त को करीबा झील में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे की करीबा झील में ओवरलोडेड नौका के पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि नौका की क्षमता 90 यात्रियों की थी, लेकिन इसमें करीब 150 लोग सवार थे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक ताज संदेश में पोप लियो चौदहवें ने हादसा के शिकार लोगों के लिए दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे मृतकों की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कार्डिनल परोलिन ने लिखा, पोप लियो चौदहवें को करीबा झील में हुए जानलेवा नाव हादसा के बारे जानकर बहुत दुख हुआ। वे मरने वालों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर सौंपते हुए उन लोगों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करते हैं जो उनकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। साथ ही कार्डिनल ने लिखा कि इस दुखद घटना पर लगातार काम करने वाले सिविल अधिकारियों और आपातकालीन कर्मचारियों के लिए भी पोप प्रार्थना करते हैं तथा इस हादसा से प्रभावित सभी लोगों पर सांत्वना, चंगाई और बल के ईश्वरीय आशीर्वाद की याचना करते हैं। इस बीच हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच कार्य जारी है। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव 41 साल पुरानी थी और झील को तेज हवाओं के बीच पार की। नाव देश के उत्तर पश्चिम में कई ग्रामीण एवं मछली पकड़ने वाले समुदायों की ओर जा रही थी। यह एक ऐसा इलाका है जहां सड़कें खराब हालत में हैं और आवागमन के साधन कम हैं। हादसे के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगुआ ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और प्रभावित परिवारों को मेडिकल एवं मनोवैज्ञानिक मदद देने का वादा किया है, जिन्होंने 13 अगस्त को करीबा स्टेडियम में अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक करीबा झील जाम्बिया की सीमा पर स्थित है और इस इलाके के ग्रामीण समुदायों और मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रास्ता है। 1950 के दशक के अंतिम और 1960 के दशक की शुरुआत के बीच जम्बेजी नदी पर एक डैम बनाकर बनाई गई यह झील 200 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है। संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानिया वापसी की 900वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर कार्डिनल परोलिन ने विश्वासियों को दुनिया भर में सताए जा रहे ख्रिस्तों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानिया वापसी की 900वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 17 अगस्त को समारोही ख्रिस्त्याग अर्पित किया। सन 1126 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल से पौत्र अवशेष की वापसी कतानिया में हुई थी। अपने संरक्षक संत के प्रति एक प्राचीन भक्ति के लिए जब विश्वासी एक साथ एकत्रित हुए तो कार्डिनल परोलिन सिसली की इस प्यारी धरती पर पोप का आशीर्वाद एवं स्नेह लेकर आए, जबकि पोप लियो चौदहवें आध्यात्मिक रूप से इस खुशी में शामिल हुए। कार्डिनल ने जयंती मिसा समारोह का अनुष्ठान करते हुए अपने उपदेश में कहा कि इस वर्षगांठ को मनाने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि इन शताब्दियों में प्रभु अपनी कलीसिया के प्रति निष्ठावान रहे, परीक्षा की घड़ी इससे बल प्रदान किया एवं कठिनाइयों में इसे शुद्ध किया और संतों के साक्ष्य के द्वारा इसे बढ़ने में मदद दी। अपने प्रवचन में कार्डिनल ने जोरदार अपील की कि हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हमारे उन सभी भाइयों एवं बहनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सह रहे हैं। पौत्र मिसा के बाद ऐतिहासिक सिटी सेंटर की कुछ मुख्य सड़कों पर संत के पावन अवशेषों के साथ एक जुलूस निकाला गया। कार्डिनल परोलिन ने आगे कहा, संत अगाथा सिर्फ कतानिया के इतिहास से जुड़ी नहीं हैं, वे आज भी ईश्वर की हैं और अपने लोगों के साथ चलती हैं। संत अगस्टीन एवं तर्तुलियन का जिक्र करते हुए उन्होंने शहीदों की अहमियत को याद किया, जिनकी प्रशंसा उनके दुख की वजह से नहीं बल्कि इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वे डटे रहे, जैसा कि हिप्पो के संत ने सिखाया था।
शहीदों का खून हार की निशानी नहीं बल्कि वह बीज है जिससे कलीसिया लगातार नए सिरे से फलती और फूलती है। इसलिए पोप के विशेष दूत कार्डिनल परोली ने अगाथा को एक ऐसी महिला के रूप में देखने का निमंत्रण दिया जो आज विश्वास जगा सकती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी पवित्रता की मिसाल हैं जिन्हें यादों के संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता बल्कि वह विश्वास, आशा और उदारता उत्पन्न कर सकती है। कार्डिनल परोली ने पौत्र मिसा में कहा, जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है तब भी ईश्वर निष्ठावान रहते हैं। पौत्र मिसा में सात मकाबी भाइयों और उनकी मां के शहादत की कहानी और प्रेरित संत पौलुस के पत्र पर चिंतन करते हुए कार्डिनल परोली ने इस बात पर जोर दिया कि ख्रिस्त से जुड़े रहना हर तरह के समझौते के लालच से बढ़कर है, जो अगाथा में स्पष्ट है। कार्डिनल परोली ने दुनिया के कई हिस्सों में सताए जा रहे ख्रिस्तों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, इसलिए आइए हम इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले अपने उन सभी भाइयों और बहनों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सहते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बिना खून के भी शहादत है जिसके लिए हमें भी बुलाया गया है। इसलिए कार्डिनल ने बतलाया कि मसीह के लिए बिना शर्त प्यार दिखाने के दो तरीके हैं, खून की शहादत और शायद कम दिखने वाली शहादत जिससे हर इंसान अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकता है, प्रतिदिन की वफादारी की शहादत। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन जीवन साथियों का जिक्र किया जो कठिनाइयों के बीच भी अपना प्यार बरकरार रखते हैं। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में पोप की वाटिका जिसे मध्य युग में पोप निकोलस तृतीय और सीनी ने बनवाया था 100% जैविक बन गई है, क्योंकि इसे पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी में बताए गए सृष्टि की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में सब्जी बाग पूरी तरह से जैविक बन रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

exclamou.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा कर रहे हैं। संत पापालियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, सामाजिक सिद्धांत एक साझा आत्म परीक्षण की चर्चा करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सत्य के लिए खुलापन कलिसिया की ख्रिस्तियता को गहराई से व्यक्त करती है, क्योंकि यह पूरे मानव परिवार का आलिंगन करती है। उसके साथ ही यह अपने को लोगों के ठोस परिस्थिति और संस्कृतियों में डुबोती है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें याद दिलाती है कि ख्रिस्तियता के इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिसिया के संग साझा करती है। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल 6वें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसके स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ के खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, जो बातें कही गई हैं, उसके प्रकाश में कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा सही जान पड़ती है। यह सिद्धांतों और नियमों की पुस्तिका नहीं है जिन्हें हमें लागू करने की जरूरत है, बल्कि वे हमारे लिए आत्म परख के माध्यम से साझा की गई प्रक्रियाएं हैं। इसकी उत्पत्ति सुसमाचार के अनंत सत्य और इतिहास के सवालों के मध्य मिलन से हुई है। यह वर्तमान समय की निशानियों से चुनौती लेती है और विज्ञान की खोजों, संस्कृतियों और मानवीय अनुभव से अपने को पोषित करती है। इसलिए जब हमारे भाई बहनों के सम्मान को क्षति पहुंचती है, जब राजनीति मानवीय त्रासदियों का उल्लेख नहीं करती है, जब अर्थव्यवस्था मानव के विरुद्ध हो जाती है या विज्ञान अपनी हस्ती से परे जाती है, तो कलिसिया को चाहिए कि वह ख्रिस्तीय धर्मावलंबियों के साथ मिलकर और दूसरे धर्मों के संग अपनी आवाज को बुलंद करे, अधिकार जताने के उद्देश्य से नहीं बल्कि एकता को प्रोत्साहित करने हेतु। सामाजिक धर्म शिक्षा की यह समझ इतिहास में एकता का ईश शास्त्र बनता है। एक इतिहास जिसमें शब्द ने शरीर धारण किया, जो वार्ता, यादों और भविष्यवाणियों के माध्यम हमारे बीच में निवास करना जारी रखता है। श्रोताओं, इतिहास में कलिसिया की उपस्थिति की रूपरेखा तैयार करने के बाद, जहां वह अपने को वार्ता के माध्यम दुनिया में प्रस्तुत करती है, संत पापा लियो कहते हैं कि मैं अब सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांतों के विकास के संबंध में विचार करना चाहूंगा, जिसने 19वीं सदी से अब तक एक वृहद सामाजिक परिवर्तन का प्रत्युत्तर दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं इसके समृद्ध शिक्षा के संबंध में न्याय नहीं कर सकूंगा, जिसका मूलभूत सार कलिसे के सामाजिक धर्म शिक्षा में प्रस्तुत की गई है और जिसका उल्लेख वर्तमान समय में धर्म सिद्धांतों की शिक्षा में की गई है। ना ही मैं व्यवस्थित रूप में हर चीज के बारे में कह सकता हूँ जो मेरे पूर्ववर्ती आराध्य अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से लौदातो सी और फ्रतेल्ली तुत्ती में व्यक्त किए गए हैं। इसके बावजूद मैं कुछ विशेष बातों पर जोर देना चाहूँगा जो इस बात की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है कि कैसे वर्तमान परिस्थिति में परंपरा की बातें निरंतर बनी रहती हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस परंपरा के अंदर मानव और समाज के संबंध में कभी न बदलने वाले सार पुराने परिस्थितियों को सुनने और समकालीन मुद्दों पर जवाब देने की नई योग्यता के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। अब मैं विकास के कुछ विशेष स्तरों के बारे में जिक्र करूंगा, जो विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नोवारुम के शुरुआती काल से शुरू हुआ था। श्रोताओं, संत पापा लियो अपने विश्व प्रेरितिक पत्र में लिखते हैं कि हम अभी जिसे कलिसे की सामाजिक धर्म शिक्षा कहते हैं, अपने में स्वतः आधुनिक युग की एक उपज नहीं है, बल्कि यह समाज के जीवन में कलिसियाई परंपराओं से संबंधित एक लंबा चिंतन का फल है, जिसे हमने ग्रहण करते हुए आकार दिया है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ कलिसे के आचार्यों और ईश शास्त्रीय तथा मध्यकालीन और आधुनिक युग के वैधानिक विकास पर आधारित है। यद्यपि कलिसे का सामाजिक धर्म सिद्धांत इस अभिव्यक्ति की मुहर संत पापा पियूस 12वें द्वारा 1950 में लगाई गई, जबकि इसकी विषय वस्तुओं के ढांचे का स्वरूप सामाजिक शिक्षा के शरीर स्वरूप संत पापा लियो 13वें के द्वारा विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नवारुम से शुरू हुई। अपने समय की नई चीजों का सामना करते हुए पूंजी और रोजगार के मध्य संघर्ष, कार्य क्षमता पर सवाल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, संत पापा लियो 13वें ने अपने को सिर्फ उथल पुथल को स्वीकारने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को कलिसिया की प्रेरिताई हेतु एक क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें गहरी आत्मपरक हेतु खोला और सुसमाचार के प्रकाश में उनके कारणों और संभावित समाधानों को समझाया तथा ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए मानव को संपूर्ण दृष्टिकोण से समझने हेतु मदद की। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस कार्य को सामाजिक धर्म सिद्धांत की एक लंबी शिक्षा स्वरूप देखा, एक अनुकरणीय अभ्यास की भांति, जिसके द्वारा कलिसिया जब ऐतिहासिक परिवर्तनों का सामना करने की स्थिति में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सच्चाई की जांच पड़ताल करती, उन्हें घोषित करती और उनके समाधान हेतु मार्गों की ओर इंगित कराती है। इस भांति विश्वास में हमेशा रहने वाली बातें और कलिसिया की पुरानी ज्ञान की बातों को हम एक सजीव सिद्धांत में प्रकट होता पाते हैं, जो सुसमाचार के प्रति उन परिस्थितियों में भी निष्ठावान बनी रहती है, जब उन्हें हर युग की नई चीजों का प्रत्युत्तर देना पड़ता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनें। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने कहा है कि वे जिम्बाब्वे के करीबा जेल में नौका हादसा के शिकार लोगों के लिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं और पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय पुलिस सेवा ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 11 अगस्त को करीबा झील में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे की करीबा झील में ओवरलोडेड नौका के पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि नौका की क्षमता 90 यात्रियों की थी, लेकिन इसमें करीब 150 लोग सवार थे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक ताज संदेश में पोप लियो चौदहवें ने हादसा के शिकार लोगों के लिए दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे मृतकों की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कार्डिनल परोलिन ने लिखा, पोप लियो चौदहवें को करीबा झील में हुए जानलेवा नाव हादसा के बारे जानकर बहुत दुख हुआ। वे मरने वालों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर सौंपते हुए उन लोगों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करते हैं जो उनकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। साथ ही कार्डिनल ने लिखा कि इस दुखद घटना पर लगातार काम करने वाले सिविल अधिकारियों और आपातकालीन कर्मचारियों के लिए भी पोप प्रार्थना करते हैं तथा इस हादसा से प्रभावित सभी लोगों पर सांत्वना, चंगाई और बल के ईश्वरीय आशीर्वाद की याचना करते हैं। इस बीच हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच कार्य जारी है। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव 41 साल पुरानी थी और झील को तेज हवाओं के बीच पार की। नाव देश के उत्तर पश्चिम में कई ग्रामीण एवं मछली पकड़ने वाले समुदायों की ओर जा रही थी। यह एक ऐसा इलाका है जहां सड़कें खराब हालत में हैं और आवागमन के साधन कम हैं। हादसे के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगुआ ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और प्रभावित परिवारों को मेडिकल एवं मनोवैज्ञानिक मदद देने का वादा किया है, जिन्होंने 13 अगस्त को करीबा स्टेडियम में अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक करीबा झील जाम्बिया की सीमा पर स्थित है और इस इलाके के ग्रामीण समुदायों और मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रास्ता है। 1950 के दशक के अंतिम और 1960 के दशक की शुरुआत के बीच जम्बेजी नदी पर एक डैम बनाकर बनाई गई यह झील 200 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है। संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानीय वापसी की 900वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर कार्डिनल परोलिन ने विश्वासियों को दुनिया भर में सताए जा रहे ख्रिस्तों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानीय वापसी की 900वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 17 अगस्त को समारोही ख्रिस्त्याग अर्पित किया। सन 1126 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल से पौत्र अवशेष की वापसी कतानिया में हुई थी। अपने संरक्षक संत के प्रति एक प्राचीन भक्ति के लिए जब विश्वासी एक साथ एकत्रित हुए तो कार्डिनल परोलिन सिसली की इस प्यारी धरती पर पोप का आशीर्वाद एवं स्नेह लेकर आए, जबकि पोप लियो चौदहवें आध्यात्मिक रूप से इस खुशी में शामिल हुए। कार्डिनल ने जयंती मिसा समारोह का अनुष्ठान

निकाला गया। कार्डिनल परोलिन ने आगे कहा, संत अगाथा सिर्फ कतानिया के इतिहास से जुड़ी नहीं है, वे आज भी ईश्वर की हैं और अपने लोगों के साथ चलती हैं। संत अगस्टीन एवं तर्तुलियन का जिक्र करते हुए उन्होंने शहीदों की अहमियत को याद किया, जिनकी प्रशंसा उनके दुख की वजह से नहीं बल्कि इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वे डटे रहे, जैसा कि हिप्पो के संत ने सिखाया था। शहीदों का खून हार की निशानी नहीं बल्कि वह बीज है जिससे कलीसिया लगातार नए सिरे से फलती और फूलती है। इसलिए पोप के विशेष दूत कार्डिनल परोली ने अगाथा को एक ऐसी महिला के रूप में देखने का निमंत्रण दिया जो आज विश्वास जगा सकती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी पवित्रता की मिसाल हैं जिन्हें यादों के संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता बल्कि वह विश्वास, आशा और उदारता उत्पन्न कर सकती है। कार्डिनल परोली ने पौत्र मिसा में कहा, जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है तब भी ईश्वर निष्ठावान रहते हैं। पौत्र मिसा में सात मकाबी भाइयों और उनकी मां के शहादत की कहानी और प्रेरित संत पौलुस के पत्र पर चिंतन करते हुए कार्डिनल परोली ने इस बात पर जोर दिया कि ख्रिस्त से जुड़े रहना हर तरह के समझौते के लालच से बढ़कर है, जो अगाथा में स्पष्ट है। कार्डिनल परोली ने दुनिया के कई हिस्सों में सताए जा रहे ख्रिस्तों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, इसलिए आइए हम इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले अपने उन सभी भाइयों और बहनों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सहते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बिना खून के भी शहादत है जिसके लिए हमें भी बुलाया गया है। इसलिए कार्डिनल ने बतलाया कि मसीह के लिए बिना शर्त प्यार दिखाने के दो तरीके हैं, खून की शहादत और शायद कम दिखने वाली शहादत जिससे हर इंसान अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकता है, प्रतिदिन की वफादारी की शहादत। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन जीवन साथियों का जिक्र किया जो कठिनाइयों के बीच भी अपना प्यार बरकरार रखते हैं। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में पोप की वाटिका, जिसे मध्य युग में पोप निकोलस तृतीय और सीनी ने बनवाया था, 100% जैविक बन गई है क्योंकि इसे पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी में बताए गए सृष्टि की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में सब्जी बाग पूरी तरह से जैविक बन रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: श्रीराम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

तुम्हारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, वैटिकन द्वितीय महासभा सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम का 6वां अध्याय धर्म विधि के पवित्र संगीत को समर्पित है। दस्तावेज कहता है, वैश्विक कलिसिया में संगीत की परंपरा अपने में एक अमूल्य निधि है, यहाँ तक कि अन्य कलाओं से भी बढ़कर। इस ख्याति का मुख्य कारण यह है कि जैसे पवित्र गीत शब्दों में पिरोए जाते, यह समारोही धर्म विधि का अंतरंग भाग बनता है। अतः पवित्र संगीत को धर्म विधि कार्यों में उतना ही पवित्र माना जाना चाहिए जितना वह पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह प्रार्थना को आनंद से भरता, चित्त में एकता उत्पन्न करता या पवित्र संस्कारों को अधिक समारोही बनाता हो। लेकिन कलिसिया सच्ची कला को स्वीकृति प्रदान करती है जिनमें जरूरी गुण शामिल हों, तथा वह उन्हें दिव्य आराधना में शामिल करती है। संत पापा ने कहा कि यहाँ हम धर्म सभा की आधारभूत शिक्षा को पाते हैं जो धर्म विधि के अनुष्ठान में संगीत को सुदृढ़ता और गहराई प्रदान करती है, जिसकी चर्चा पहले ही संत पीयूष दसवें ने अपने मोन्तु प्रोप्रियो स्वतः से प्रेरित इंटर सोलिचितुदिनस में किया है। संगीत वास्तव में धर्म विधि क्रियाकलापों का एक भाग है, न कि समारोह का एक श्रृंगार मात्र ही। धर्म विधि में गायन और वाद्य यंत्रों की धुन का अर्थ प्रार्थना करना है, अपने हृदय को अपने भाई बहनों और ईश्वर के संग एक लय में करना, जहां हम अपने को समारोह के रहस्य में सक्रिय रूप से सहभागी करते हैं। विशेष रूप से संगीत प्रार्थना के प्रभावकारी आयाम को व्यक्त करता है। संत अगुस्टिन कहते हैं, कंतारे अमातिस एस्त, अर्थात गान उससे जुड़ा है जो प्रेम करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे हृदय को ईश्वर से मिली कृपाओं के लिए खोलने और उसके अनुरूप बनने को मदद करता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Il canto inoltre favorisce la comunione.
1: गायन हममें एकता पोषित करता है, यह हमारे हृदयों को जोड़ता है जहां हम अपनी विभिन्नताओं से ऊपर उठते और हर एक को एक स्वर में ईश्वर की महिमा करने हेतु अग्रसर करते हैं। इस भांति यह कलिसिया को ज्योतिर्मय करती है, एकता की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति जो उसके स्वभाव का अंग है। कुछ आवश्यकताओं की उत्पत्ति गहरे ईश शास्त्रीय गान की महत्वपूर्णता से होती है जो धर्म विधि के क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम इसे चाहिए कि वह हर स्तर के जवाब स्वरूप धार्मिक अनुष्ठान के अनुकूल हो, किसी फैशन या संगीतकार की विशेष संवेदनाओं से परे। इसका स्वरूप विशेषकर इसका स्वर संगीत अपने में भद्र और सरल होनी चाहिए। संगीत का स्तर उच्च और सहज जो क्रियान्वयन के योग्य, विशेषकर जब उसे पूरे समुदाय के द्वारा गाया जाना है। यही कारण है, संत पापा ने कहा, कि धर्म सभा इस बात पर जोर देती है कि इसके पद सुयोग्य हों, गहरे और साथ ही साथ सहज ही समझ के योग्य, जो धर्म ग्रंथ, धर्म विधि की पुस्तकें और कलिसियाई आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित हो। हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे प्राचीन सिद्धांत लेक्स ओरेंदी और लेक्स क्रेडेंदी के आयाम अर्थात प्रार्थना के नियम, जो विश्वास के नियम हैं, अपने में सजीव रहें और निरंतर उनका विकास हो। सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम विश्वासियों के सक्रिय सहभागिता की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देती है। हमें इस तथ्य को समझने की जरूरत है, उस विशेष रहस्य के आधार पर जिसका अनुष्ठान किया जा रहा है और दैनिक जीवन में उसका संबंध, एक निरंतर परिवर्तन के मनोभाव में जो विश्वासियों के जीवन को चिन्हित करता है, एक ठोस माध्यम जिसके द्वारा धर्म ग्रंथ के संगीत की विशेष भूमिका प्राप्त की जाती है। धर्म सिद्धांत इसका एक स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करता है, उद्घोषणाओं, प्रत्युत्तरों, स्तोत्र, भजनों और गायनों के द्वारा लोग सहभागी होने हेतु प्रोत्साहित होते हैं और शांति में आराधना पोषित होती है। यह हर व्यक्ति, पुरोहित या विश्वासी को उन सारे कार्य के लिए प्रेरित करता हो जो उसकी प्रकृति का अंग और धर्म विधि के सिद्धांतों का भाग हो। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस भांति समारोह के लिए धार्मिक संगीत की अन्य शैलियों का परित्याग किए बिना ग्रेगोरियन गान को अत्यधिक महत्व देती है। यहाँ हम पाइप ऑर्गन पर दिए जाने वाले खास ध्यान को भी पाते हैं, जबकि अन्य दूसरे वाद्य यंत्रों की भी अनुमति है, इस शर्त पर कि वे यंत्र सुयोग्य हों या अपने में धार्मिक कार्यों की उपयोगिता हेतु सुव्यवस्थित किए जाते हों, जो ईश मंदिर के अनुरूप हों और जो सही अर्थ में विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक लाभ प्रद हो। नवीनीकरण की एक विषय वस्तु धर्म सभा के निकट है, जिसे हम संस्कृतिकरण स्वरूप पाते हैं, जो पवित्र संगीत को अपने में समाहित करता है। इस संदर्भ में विशेषकर विभिन्न संस्कृतियों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। धर्म सभा उनके महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए उन पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान करती है, जैसे कि वे लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अंग बनते हैं। अतः वहीं दूसरी ओर एक धार्मिक मनोभावना हर किसी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, दूसरी ओर जहाँ तक हो सके यह क्रियान्वयन के योग्य हो। हमें हर तरह से यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि लोगों के पारंपरिक संगीत विद्यालयों और धर्म विधि दोनों क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाते हों। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक संदर्भ में स्कोला कांतोरूम को एक खास भूमिका दी गई है। धर्म सभा प्रेरिताई हेतु वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश देती है, जिसमें विभिन्न संगीतों का उपयोग किया जाता हो और साथ ही विश्वासियों द्वारा गायन में सक्रिय सहभागिता ली जाती हो। यही कारण है कि संगीतज्ञ से इस बात की मांग की जाती है कि वह कलिसियाई संगीत का ज्ञान रखता हो और उस विरासत को कायम रखता हो जो उसे धर्म विधि के लिए नए गीतों को लिखने में प्रेरणा प्रदान करता हो, जबकि वह समकालीन संवेदनशीलता और विभिन्न परंपराओं का सम्मान करता हो, जिससे फैशन की कुरूपता से आराधना शुद्ध की जाती हो, अरुचिकर अभिव्यक्तियों, अप्रेरणादायक संगीतों के पदों से, जो समारोह हेतु उचित नहीं है, मुक्त किया जा सके, जिससे धार्मिक संरचनाओं को गरिमा और उत्कृष्टता की गारंटी प्राप्त हो। Santo Papa Leo ne ha.
2: Per tutte queste ragioni i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra.
1: Inhi karanon se dham sabha ke dharmacharyon ne is baat ko protsahit kiya ki nav shishyalayon, laghu gurukulon aur dharm sanghyon ke prashikshanalayon mein tatha kristiya sansthanon aur vidyalayon mein dharm vidhi ke geeton ka abhyas aur prashikshan diya jaye aur is baat ka dhyan rakha jaye ki sangeetagyon aur gayakon ka dharm vidhi ke sambandh mein uchit prashikshan diya jata ho। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के गीतों के संबंध में एक वृहद सम्मान था जो कलीसियाई एकता की एक निशानी थी। हम इस भांति अंतियोक के संत इग्नासियुस के सुंदर वचनों से इस धर्म शिक्षा माला की समाप्ति कर सकते हैं। आप में हर कोई एक गायक दल बने जिससे सहमति और सामंजस्य पूर्ण और एकता में ईश्वरीय स्वर को धारण कर आप यीशु ख्रिस्त के संग एक स्वर में पिता का गुण गान कर सकें, जिससे वे आपको सुन सकें और आपके अच्छे कार्यों में यह पहचान सकें कि आप उनके पुत्र के सदस्य हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने हंगरे में हुई दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। मरने वालों को ईश्वर की दया को सिपोर्ट किया और ईश्वर से उनके परिवारों को दिलासा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेट्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित ताज संदेश में पोप ने हंगरी में हुए एक दुखद सड़क हादसे के लिए दुख व्यक्त किया, जिसमें पोलिश तीर्थयात्रियों का एक दल मेजोगोरे से लौट रहा था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताज संदेश को उन धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों को भेजा गया जहाँ से तीर्थयात्री आए थे। पोप ने इस खतरनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त की है। पोप ने कहा, मैं उन्हें ईश्वर की दया को सपोर्ट करता हूँ और ईश्वर से उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंत में संत पापा ने सभी को चेस्तोकुआ की धन्या कुमारी मरियम को सपोर्ट किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। दुर्घटना 15 और 16 अगस्त की रात को M3 मार्ग पर बुडापेस्ट से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में हुआ। बताया जा रहा है कि 59 लोगों को ले जा रही बस सड़क से उतरकर एक खाई में पलट गई। पोलिश और हंगेरियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने भी अपनी संवेदना जताई है और पीड़ितों एवं घायलों के लिए प्रार्थना करने का भरोसा दिया है। वियतनाम में लावांग की माता मरियम के सम्मान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा चिंतन एवं प्रार्थना के साथ संपन्न हुई, जिसकी विषय वस्तु थी मरियम सुसमाचार के संदेश वाहक। पेरिस विदेशी मिशन के वियतनामी पुरोहित फादर लैंड्री वारेने ने कहा, लावांग वियतनाम में लूट के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन तीर्थयात्राओं का जिक्र किया जो स्वर्गरोहण की खासियत को दिखाती हैं। 13 से 15 अगस्त तक वियतनाम के हुए महाधर्म प्रांत में लावांग की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थस्थल में मरियम के पास मां के घर जाने की विषय वस्तु पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था ताकि सांत्वना पा सकें और सच्चे शिष्य एवं मिशनरी बनना सीख सकें। फादर लैंड्री वारेने ने कहा, यह तीर्थस्थल वियतनामी लोगों की आस्था के केंद्र में है, जो खास तौर पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणों से लावांग की माता मरियम के प्रति समर्पित है। लावांग वियतनाम में लूट के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन बड़े तीर्थस्थलों का जिक्र किया जो धन्या कुमारी मरियम के स्वर्गरोहण की खासियत को दिखाती है। तीर्थयात्री उत्तरी, दक्षिणी और मध्य वियतनाम के साथ साथ विदेशों में वियतनामी समुदायों से भी आए थे। स्थानीय कलीसिया के अनुमान अनुसार इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। फादर फ्रांसिस ने लोगों के विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हर कोई उस बात पर विश्वास करता है जो मरियम ने 1789 में हमारे पूर्वजों से कही थी कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। हम मानते हैं कि हमारी माँ देश के लिए, वियतनाम की कलीसिया के लिए और शांति के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। वे बताते हैं कि उनकी भक्ति ख्रिस्त्याग, वापसी का संस्कार, क्रूस रास्ता और करुणा की पौत्र घड़ी में भाग लेने जैसे तरीकों से व्यक्त होती है। वे कहते हैं, विश्वासों को लगता है कि वे माँ के दिल में हैं, उनके आंचल तले मरियम उनकी शरण है। इसमें एक मिशनरी पहलू भी है। वे कहते हैं कि लोग मरियम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रभु और उनके प्यार को दूसरों तक पहुंचाना सीखते हैं। लावांग की माता मरियम के प्रति भक्ति की शुरुआत 1798 में हुई, जब वियतनाम के इतिहास में ख्रिस्तियों पर अत्याचार का सबसे बुरा दौर था। सम्राट कान थिंग ने गिरजाघरों को नष्ट करने और कैथलिकों को सताने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें विदेशी धर्म के अनुयायी माना जाता था। कई लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने लावांग के घने जंगल में शरण ली, जहां उन्होंने भूख, बीमारी और ठंड झेली और उन्हें डर था कि उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाएगा। शरणार्थी हर शाम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते, आग जलाते और रोजरी माला विनती करते थे। रात की इन्हीं प्रार्थनाओं के दौरान एक दिन रोशनी में लिपटी एक महिला दिखाई दी, जो पारंपरिक वियतनामी कपड़े पहने हुए थी और उनके साथ 2 स्वर्गदूत भी थे। उनका संदेश सबसे ज्यादा दिलासा देने वाला था, मेरे बच्चों दृढ़ बनो और विश्वास रखो, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यह खास बात है कि मरियम बिल्कुल एक वियतनामी महिला की मुखाकृति और कपड़ों में दिखाई दी।
उनकी इस छवि को स्थानीय कलीसिया ने खासकर 20वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर फैलाया। विश्वास और पहचान के बीच एक गहरा संबंध दिखाती है। सदियों बाद आज धर्माध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि जब कैथोलिकों पर विदेशी धर्म से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था, लावांग इस बात की गवाही देती हैं कि पूरी तरह कैथोलिक और साथ ही पूरी तरह वियतनामी होना भी संभव है। आज भी तीर्थयात्री इस याद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। वे बरगद के पेड़ों की छांव में टेंट में सोते हैं, रोजरी माला विनती करते और उत्सव के दौरान नाटकों के जरिए 1798 के दिव्य दर्शन की कहानी सुनाते हैं। पोप लियो 14वें ने सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में एसोसिएट प्रोफेसर कैरन रोड्रिगस को वैटिकन के समग्र मानव विकास विभाग में सलाहकार के रूप में चुना है। नियुक्ति की घोषणा 18 अगस्त को हुई। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित वैटिकन विभाग के सलाहकार के रूप में कैरन रोड्रिगस के साथ कई अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। वे खासकर अध्ययन की जरूरत वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयोगी राय एवं सुझाव देते हैं। बार्सिलोना में ICOF हॉस्पिटल क्लिनिक की एक नर्स एलिजाबेथ अजेरमी ने कस्तेल गंदोल्फो में पोप लियो से बात की और उन्हें लर्निंग टू डाई इन ऑर्डर टू लिव नाम की किताब भेंट की। यह किताब उनके भाई जेबियर अजेरमी की कहानी बताती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
1: cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, वैटिकन द्वितीय महासभा सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम का छठवां अध्याय धर्म विधि के पवित्र संगीत को समर्पित है। दस्तावेज कहता है, वैश्विक कलिस में संगीत की परंपरा अपने में एक अमूल्य निधि है, यहाँ तक कि अन्य कलाओं से भी बढ़कर। इस ख्याति का मुख्य कारण यह है कि जैसे पवित्र गीत शब्दों में पिरोए जाते, यह समारोही धर्म विधि का अंतरंग भाग बनता है। अतः पवित्र संगीत को धर्म विधि कार्यों में उतना ही पवित्र माना जाना चाहिए जितना वह पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह प्रार्थना को आनंद से भरता, चित्त में एकता उत्पन्न करता या पवित्र संस्कारों को अधिक समारोही बनाता हो। लेकिन कलीसिया सच्ची कला को स्वीकृति प्रदान करती है जिनमें जरूरी गुण शामिल हों तथा वह उन्हें दिव्य आराधना में शामिल करती है। संत पापा ने कहा कि यहाँ हम धर्म सभा की आधारभूत शिक्षा को पाते हैं जो धर्म विधि के अनुष्ठान में संगीत को सुदृढ़ता और गहराई प्रदान करती है, जिसकी चर्चा पहले ही संत पीयूष दसवें ने अपने मोन्तु प्रोप्रियो स्वतः से प्रेरित इंटर सोलिची तूदिनस में किया है। संगीत वास्तव में धर्म विधि क्रियाकलापों का एक भाग है, न कि समारोह का एक श्रृंगार मात्र ही। धर्म विधि में गायन और वाद्य यंत्रों की धुन का अर्थ प्रार्थना करना है, अपने हृदय को अपने भाई बहनों और ईश्वर के संग एक लय में करना, जहां हम अपने को समारोह के रहस्य में सक्रिय रूप से सहभागी करते हैं। विशेष रूप से संगीत प्रार्थना के प्रभावकारी आयाम को व्यक्त करता है। संत अगुस्टिन कहते हैं, कंतारे आमातीस एस्त, अर्थात गान उससे जुड़ा है जो प्रेम करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे हृदय को ईश्वर से मिली कृपाओं के लिए खोलने और उसके अनुरूप बनने को मदद करता है। संत पापा लियो ने कहा,
1: Il canto inoltre favorisce la comunione.
0: गायन हम में एकता पोषित करता है, यह हमारे हृदयों को जोड़ता है जहां हम अपनी विभिन्नताओं से ऊपर उठते और हर एक को एक स्वर में ईश्वर की महिमा करने हेतु अग्रसर करते हैं। इस भांति यह कलिस्य को ज्योतिर्मय करती है, एकता की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति जो उसके स्वभाव का अंग है। कुछ आवश्यकताओं की उत्पत्ति गहरे ईश शास्त्रीय गान की महत्वपूर्णता से होती है जो धर्म विधि के क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम इसे चाहिए कि वह हर स्तर के जवाब स्वरूप धार्मिक अनुष्ठान के अनुकूल हो, किसी फैशन या संगीतकार की विशेष संवेदनाओं से परे। इसका स्वरूप विशेषकर इसका स्वर संगीत अपने में भद्र और सरल होनी चाहिए। संगीत का स्तर उच्च और सहज जो क्रियान्वयन के योग्य, विशेषकर जब उसे पूरे समुदाय के द्वारा गाया जाना है। यही कारण है, संत पापा ने कहा, कि धर्म सभा इस बात पर जोर देती है कि इसके पद सुयोग्य हों, गहरे और साथ ही साथ सहज ही समझ के योग्य, जो धर्म ग्रंथ धर्म विधि की पुस्तकें और कलिसियाई आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित हो। हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे प्राचीन सिद्धांत लेक्स ओरेंदी और लेक्स क्रेडेंदी के आयाम अर्थात प्रार्थना के नियम जो विश्वास के नियम हैं अपने में सजीव रहें और निरंतर उनका विकास हो। सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम विश्वासियों के सक्रिय सहभागिता की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देती है। हमें इस तथ्य को समझने की जरूरत है, उस विशेष रहस्य के आधार पर जिसका अनुष्ठान किया जा रहा है और दैनिक जीवन में उसका संबंध एक निरंतर परिवर्तन के मनोभाव में जो विश्वासियों के जीवन को चिन्हित करता है। एक ठोस माध्यम जिसके द्वारा धर्म ग्रंथ के संगीत की विशेष भूमिका प्राप्त की जाती है। धर्म सिद्धांत इसका एक स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करता है उद्घोषणाओं प्रत्युत्तरों स्तोत्र भजनों और गायनों के द्वारा लोग सहभागी होने हेतु प्रोत्साहित होते हैं और शांति में आराधना पोषित होती है। यह हर व्यक्ति पुरोहित या विश्वासी को उन सारे कार्य के लिए प्रेरित करता हो जो उसकी प्रकृति का अंग और धर्म विधि के सिद्धांतों का भाग हो। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस भांति समारोह के लिए धार्मिक संगीत की अन्य शैलियों का परित्याग किए बिना ग्रेगोरियन गान को अत्यधिक महत्व देती है। यहाँ हम पाइप ऑर्गन पर दिए जाने वाले खास ध्यान को भी पाते हैं, जबकि अन्य दूसरे वाद्य यंत्रों की भी अनुमति है, इस शर्त पर कि वे यंत्र सुयोग्य हों या अपने में धार्मिक कार्यों की उपयोगिता हेतु सुव्यवस्थित किए जाते हों, जो ईश मंदिर के अनुरूप हों और जो सही अर्थ में विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक लाभप्रद हो। नवनीकरण की एक विषय वस्तु धर्म सभा के निकट है, जिसे हम संस्कृतिकरण स्वरूप पाते हैं, जो पवित्र संगीत को अपने में समाहित करता है। इस संदर्भ में विशेषकर विभिन्न संस्कृतियों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। धर्म सभा उनके महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए उन पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान करती है, जैसे कि वे लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अंग बनते हैं। अतः वहीं दूसरी ओर एक धार्मिक मनोभावना हर किसी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जहाँ तक हो सके यह क्रियान्वयन के योग्य हो। हमें हर तरह से यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि लोगों के पारंपरिक संगीत विद्यालयों और धर्म विधि दोनों क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाते हों। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक संदर्भ में स्कोला कांतोरूम को एक खास भूमिका दी गई है। धर्म सभा प्रेरिताई हेतु वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश देती है, जिसमें विभिन्न संगीतों का उपयोग किया जाता हो और साथ ही विश्वासियों द्वारा गायन में सक्रिय सहभागिता ली जाती हो। यही कारण है कि संगीतज्ञ से इस बात की मांग की जाती है कि वह कलिसियाई संगीत का ज्ञान रखता हो और उस विरासत को कायम रखता हो जो उसे धर्म विधि के लिए नए गीतों को लिखने में प्रेरणा प्रदान करता हो, जबकि वह समकालीन संवेदनशीलता और विभिन्न परंपराओं का सम्मान करता हो, जिससे फैशन की कुरूपता से आराधना शुद्ध की जाती हो, अरुचिकर अभिव्यक्तियों अप्रेरणादायक संगीतों के पदों से जो समारोह हेतु उचित नहीं है मुक्त किया जा सके, जिससे धार्मिक संरचनाओं को गरिमा और उत्कृष्टता की गारंटी प्राप्त हो। Sant Papa Leo ne kaha.
1: Per tutte queste ragioni i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra.
0: Inhi karanon se dham sabha ke dharmacharyon ne इस बात को प्रोत्साहित किया कि नव शिष्यालयों लघु गुरुकुलों और धर्म संघियों के प्रशिक्षणालयों में तथा ख्रिस्तीय संस्थानों और विद्यालयों में धर्म विधि के गीतों का अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि संगीतज्ञों और गायकों का धर्म विधि के संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाता हो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के गीतों के संबंध में एक वृहद सम्मान था जो कलीसियाई एकता की एक निशानी थी। हम इस भांति अंतियोख के संत इग्नासियुस के सुंदर वचनों से इस धर्म शिक्षा माला की समाप्ति कर सकते हैं। आप में हर कोई एक गायक दल बने जिससे सहमति और सामंजस्य पूर्ण और एकता में ईश्वरीय स्वर को धारण कर आप यीशु ख्रिस्त के संग एक स्वर में पिता का गुण गान कर सकें, जिससे वे आपको सुन सकें और आपके अच्छे कार्यों में यह पहचान सकें कि आप उनके पुत्र के सदस्य हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने हंगरी में हुई दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। मरने वालों को ईश्वर की दया को सपोर्ट किया और ईश्वर से उनके परिवारों को दिलासा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित ताज संदेश में पोप ने हंगरी में हुए एक दुखद सड़क हादसे के लिए दुख व्यक्त किया, जिसमें पोलिश तीर्थयात्रियों का एक दल मेजोगोरे से लौट रहा था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताज संदेश को उन धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों को भेजा गया जहाँ से तीर्थयात्री आए थे। पोप ने इस खतरनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त की है। पोप ने कहा, मैं उन्हें ईश्वर की दया को सपोर्ट करता हूँ और ईश्वर से उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंत में संत पापा ने सभी को चेस्तोकुआ की धन्य कुमारी मरियम को सपोर्ट किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। दुर्घटना 15 और 16 अगस्त की रात को M3 मार्ग पर बुडापेस्ट से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में हुआ। बताया जा रहा है कि 59 लोगों को ले जा रही बस सड़क से उतरकर एक खाई में पलट गई। पोलिश और हंगेरियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने भी अपनी संवेदना जताई है और पीड़ितों एवं घायलों के लिए प्रार्थना करने का भरोसा दिया है। वियतनाम में लावांग की माता मरियम के सम्मान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय तीर्थयात्रा चिंतन एवं प्रार्थना के साथ संपन्न हुई, जिसकी विषय वस्तु थी मरियम सुसमाचार के संदेशवाहक। पेरिस विदेशी मिशन के वियतनामी पुरोहित फादर लैंड्री वारेने ने कहा, लावांग वियतनाम में लूर्द के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन तीर्थयात्राओं का जिक्र किया जो स्वर्गारोहण की खासियत को दिखाती है। 13 से 15 अगस्त तक वियतनाम के हुए महाधर्म प्रांत में लावांग की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थस्थल में मरियम के पास मां के घर जाने की विषय वस्तु पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था, ताकि सांत्वना पा सकें और सच्चे शिष्य एवं मिशनरी बनना सीख सकें। फादर लैंड्री वारेने ने कहा, यह तीर्थस्थल वियतनामी लोगों की आस्था के केंद्र में है, जो खास तौर पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणों से लावांग की माता मरियम के प्रति समर्पित है। लावांग वियतनाम में लूर्द के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन बड़े तीर्थस्थलों का जिक्र किया जो धन्य कुमारी मरियम के स्वर्गारोहण की खासियत को दिखाती है। तीर्थयात्री उत्तरी, दक्षिणी और मध्य वियतनाम के साथ साथ विदेशों में वियतनामी समुदायों से भी आए थे। स्थानीय कलीसिया के अनुमान अनुसार इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। फादर फ्रांसिस ने लोगों के विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हर कोई उस बात पर विश्वास करता है जो मरियम ने 1789 में हमारे पूर्वजों से कही थी कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। हम मानते हैं कि हमारी माँ देश के लिए, वियतनाम की कलीसिया के लिए और शांति के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। वे बताते हैं कि उनकी भक्ति ख्रिस्त त्याग, वापसी का संस्कार, क्रूस रास्ता और करुणा की पौत्र घड़ी में भाग लेने जैसे तरीकों से व्यक्त होती है। वे कहते हैं, विश्वासियों को लगता है कि वे माँ के दिल में हैं, उनके आंचल तले, मरियम उनकी शरण है। इसमें एक मिशनरी पहलू भी है। वे कहते हैं कि लोग मरियम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रभु और उनके प्यार को दूसरों तक पहुंचाना सीखते हैं। लावांग की माता मरियम के प्रति भक्ति की शुरुआत 1798 में हुई, जब वियतनाम के इतिहास में ख्रिस्तियों पर अत्याचार का सबसे बुरा दौर था। सम्राट कान थिंग ने गिरजाघरों को नष्ट करने और कैथलिकों को सताने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें विदेशी धर्म के अनुयायी माना जाता था। कई लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने लावांग के घने जंगल में शरण ली, जहां उन्होंने भूख, बीमारी और ठंड झेली और उन्हें डर था कि उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाएगा। शरणार्थी हर शाम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते, आग जलाते और रोजरी माला विनती करते थे। रात की इन्हीं प्रार्थनाओं के दौरान एक दिन रोशनी में लिपटी एक महिला दिखाई दी, जो पारंपरिक वियतनामी कपड़े पहने हुई थी और उनके साथ 2 स्वर्गदूत भी थे। उनका संदेश सबसे ज्यादा दिलासा देने वाला था, मेरे बच्चों, दृढ़ बनो और विश्वास रखो, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यह खास बात है कि मरियम बिल्कुल एक वियतनामी महिला की मुखाकृति और कपड़ों में दिखाई दी।
उनकी इस छवि को स्थानीय कलीसिया ने खासकर 20वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर फैलाया। विश्वास और पहचान के बीच एक गहरा संबंध दिखाती है। सदियों बाद आज धर्माध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि जब कैथोलिकों पर विदेशी धर्म से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था, लावांग इस बात की गवाही देती हैं कि पूरी तरह कैथोलिक और साथ ही पूरी तरह वियतनामी होना भी संभव है। आज भी तीर्थयात्री इस याद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। वे बरगद के पेड़ों की छांव में टेंट में सोते हैं, रोजरी माला विनती करते और उत्सव के दौरान नाटकों के जरिए 1798 के दिव्य दर्शन की कहानी सुनाते हैं। पोप लियो 14वें ने सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में एसोसिएट प्रोफेसर कैरन रोड्रिगस को वैटिकन के समग्र मानव विकास विभाग में सलाहकार के रूप में चुना है। नियुक्ति की घोषणा 18 अगस्त को हुई। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित वैटिकन विभाग के सलाहकार के रूप में कैरन रोड्रिगस के साथ कई अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। वे खासकर अध्ययन की जरूरत वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयोगी राय एवं सुझाव देते हैं। बार्सिलोना में ICOF हॉस्पिटल क्लिनिक की एक नर्स एलिजाबेथ अजेरमी ने कस्टेल गंदोल्फो में पोप लियो से बात की और उन्हें लर्निंग टू डाई इन ऑर्डर टू लिव नाम की किताब भेंट की। यह किताब उनके भाई जेबियर अजेरमी की कहानी बताती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।